जात मह ज्योत ज्योत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहेब सिफत सुआलेओ जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता।

दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहेब सच नाए रहाओ साचे नाम की तिल वडियाई आँख थके की।

हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपतासा मिल संगत।

हर त्याव है, हर त्याव है तुध जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुकत पए जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ।

हर हर रूप समासी से तन से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता

जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मेंडा साई, जो तौ पावै सोई थीसी।

तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

का नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा।

काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशानै, काट काट के पट पट की जानै। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धारत तब देह अपारा। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निरपकार निरलंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेवना पावत बेदा। ताको

सकरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारो असिख संगरो।

तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याय है, ताकि काल निकट न आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताकि ताप तनक मोहर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वय सकै ना कोई।

जिसका सबसे आधारो। जे को खावै जे को पुंचै तिसका हुए उधारो। एहि वसत तजी नह जाई नित नित राख उरतारो। तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला।

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, उथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड जाहे। पहु जल बिखम असगाह गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे। कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो किरपाल समाले साहे साहे। व्यर्था कोय न जाए जे आवै तो दयाहे। सलूक महला पंजवां अंतर गुर आराधना। जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना। श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर से तीरत्या दरगह पाई ठाओ। कहो नानक किरपा करे जिसनु ए वाथ दे। जग मह उत्तम काडी है विरले के महला पंजवां।

दान बबेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सरजी दे पवित्र दर्शनी इशनान चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी।

कृपा करु दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण न विचारु कोई, माटी का क्या तुप है स्वामी, मानस की गत एही, माधो हम ऐसे तू ऐसा।

तुम चंदन हमरिंड बापुरे संग तुम्हारे बासा नीच रूख ते ऊच पहे हैं।

बहुत ही परम सम्मान योग साहिब सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब गरीब नवाज सतगुरु जी ने तरस किया है। अमृत वेले पावन तख्तों ते प्रकाशमान हो करके अज दे इलाही दरगाही श्री मुखवाक बख्शिश किए हैं, जो सोरठ राग विच्चों सतगुरां दे पावन अंग 631 अते 32 उपर पावन शब्द सुभायमान है। गुरु तेग बहादुर नौवें सतगुरु दतार पिता महाराज जी की अमृत रसना तो यह अमृत पावन शब्द उच्चारण किया गया है, जिस विच सतगुरां ने मानस देही मनुखा जन्म की सफलता अते असफलता का जिक्र किया है कि जेड़े लोग मानुख देह प्राप्त करके उस गुरु परमेश्वर धर्म के कर्मों तो मूँह फेर लेंदे ने उन्हां दा जन्म अजाई बतीत हो जाता है, उन्हां नूं ना कदी गुरु की सेवा का मौका मिलता है ना धर्म के कर्म करन दा मौका मिलता है, ते काल उन्हां दे सिर ते आन खलूंदा है। जिन्हां ते गुरु ने कृपा कीती हुंदी है, जिन्हां नूं इह समझ आ गई कि यह मानस देही प्राप्त हुई है, इस देही का मकसद प्रयोजन यही है कि उस अकाल पुरख वाहिगुरु का सिमरन करके उस विच अभेद हो जाना, सच नूं जान लेना, वो अपने मानस देही नूं सफलियां कर लेंदे ने। बाकी लोकां दी इह देह इह जीवन सदा भटकना विच ही गुजरदा रहिंदा है। गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी कृपा करन, अपने चरणों की प्रीत और प्रतीत बख्शिश करके निवाजन, साडा मिलिया होया ये मनुखा जन्म सफला हो जाए। अज साहिब सतगुरु धन धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह अष्टम बलवीरा सतगुरु जी का पावन पवित्र प्रकाश पुरब है। अज के दिन सतगुरु दतार पिता महाराज जी ने श्री कीरतपुर साहब की धरती से सतवें गुरदेव गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह अति माता कृष्ण कौर जी दे उदर तो 1656 ईस्वी नूं सावण वदी 9 1656 ईस्वी नूं सतगुरु जी ने पावन पवित्र प्रकाश धारण किया सी। बहुत छोटी उम्र दे विच गुरदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह गुरियाई दे तख्त ते बैठे, दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी दा पावन अस्थान जिथे गुरुदेव जी ने जन्म धारण किया, प्रकाश धारण किया, गुरुद्वारा सीस महल साहिब कीरतपुर साहिब की धरती से सुशोभित है। दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी ने 3 साल गुरियाई के तख्त से बैठ करके सतगुरु दतार गुरु नानक के घर की सेवा की, गुंगियां नूं ज्ञान बख्शिश किया, मूर्खां नूं विद्या बख्शिश की, कंगालां नूं धन बख्शिश किया, अंदर तो टुटे हुए साकत मनुखां नूं वाहिगुरू परमेश्वर के नाम नाल जोड़िया, चोरां नूं साध बनाया। ये गुरु हर कृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी ने बड़ी छोटी उम्र विच गुरियाई के तख्त ते बैठ के ये बख्शिशां कीतियां। कीरतपुर सों दतार पिता महाराज जी जदों दिल्ली वल जांदे हन, उस रस्ते विच अनेकां दुखी कोड़ी दुखियारे संताए हुए लोकां दा सतगुरु दतार पिता महाराज जी नाल मिलाप हुंदा है, ते गुरु साहिब जी दे दर्शनां नाल ही उन्हां नूं शांति प्राप्त हुंदी है। औरंगजेब ने बड़ा जोर लाया सतगुरां नूं चुकाउण दा, पर दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह कुल निरंकारी जोत सतगुरु सदा अपने अकीदे ते अटल रहे। दिल्ली जा विराजे, दिल्ली दीआं संगतां ने दर्शन कीते, उत्थे वड्डी बीमारी फैली, आप गुरु साहिब जी ने हत्थी लोकां दी सेवा कीती, दर्शन दे करके सतगुरु जी सारिआं नूं रोग मुक्त करदे सन। तां ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इह वचन कहे ने, श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। ऐसे दीन दयाल सतगुरु जी का अज प्रकाश पुरब है। गुरुदेव पिता महाराज जी कृपा कर सभना नूं 8वें गुरुदेव जी दे आगमन दिहाड़े दियां प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां हों। सतगुरु जी कृपा करन सभना दी कीती हुई सेवा थाएं पाउण,
ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ, ਨਾਮਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚਾਅ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਵਾਜਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

अष्टपदी सिमरौं सिमर सिमर सुख पावौं कल कलेश तन माही मिटावौं सिमरौं जास विसंबर एकै नाम जपत आगंत अनिकै।

कै सिमरन दर गह मानी, प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला, से सिमर है जिने आप सिमराए, नानक ता कै लागो पाए, प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए, प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना।

प्रधान। प्रभु को सिमरह से बे मोहताजे, प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे। प्रभु को सिमरह से सुखवासी, प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभु को सिमरह से पर उपकारी, प्रभु को सिमरह तिन सद बलिहारी। प्रभु को सिमरह से मुख सुहाए, प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे। प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता। प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरह तिन अनदक।

प्रभु कै सिमरन कबू न झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बेगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाए, हर सिमरन पाए सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंठ जाते, हर सिमरन

अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जह महाप्यान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जह मुश्किल होवै अत भारी हर को नाम किन माहे उधारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनिक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जे मार्ग जात केला तै हर नाम संघूत सुहेला ऐसा नामन सदा त्याई नानक गुरमुख परम गत पाई छूटत नहीं कोट लखवाही नाम जपत है पार पराही अनिक विघ्न जय आय सिंगार हर का नाम तत्काल उदार है

हर जस करत संत दिन रात, हर हर औकद साध कमात, हर जन कै हर नाम निदानु, पार ब्रह्म जन कीनु दान। मन तन रंग रते रंग कै, नानक जन कै बिरत बिकै, हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग।

सेवा प्रभ दीना। हर हर जन कै उठसतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रसमाते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बह करे, नानक जन संकेते तरे। पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद्वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग

अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत विख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिर।

साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल बल जासा। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, सासंग जा का मिटै अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गणिय सब ते उच्चा। जा कै मन हुए सगल किरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पिखै सगल श्रिष्ट साजना। सुख दुख जन सम दृष्टिता, नानक पाप गुण नहीं लेपा। निर धन को धन ते

पावै, कर गह लेहु ओढ़ निभावै, कहाँ बुझारत बूझै डूरा, निष्कहियै तो समझै पूरा, कहा विष्णु पद गावै गुंग, जतन करै ताव भी सुर भंग, कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं हो तू हाउस गवन, करतार करुणा मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै, संग सहाय सो आवै न चीत, जो बैराई ता स्यो प्रीत, बलुआ के गृह पीतर बसै, आनंद केल माया रंग रसै, दृढ़ कर्मा ने मने प्रतीत, काल न आवै मूढ़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ त्रोह, याहू जुगत बिहानी कई जन्म, नानक राख लिहु अपन कर कर्म।

बिन नावै पत जाय अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्तु कारण बिकुट गवावै। एक भी न दे दस भी हिरले, तौ मूड़ा कहु कह करे। जिस ठाकुर स्यो नाही चारा, ताको कीजै सद नमस्कारा। जाकै मन लागा प्रमिटा, सर्व सुख ताहु मन उठा। जिस जने अपना हुक्म नाया, सर्व तोग नानक तिन पाया। अगंत साहु अपनी दे रासु, खात पीत बरतैन दुलासु। अपनी अमान कच बहुर साहु, ले अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवै, बहुर उसका विश्वास न होवै। जिसकी बस्त से आज्ञा राखै, प्रभु की आज्ञा मन है मत है।

अष्टपदी। जे प्रसाद शक्ति ही अमृत कारे तिस ठाकुर को रख मन माही। जे प्रसाद सुगंधत तन लावह तिसको सिमरत परम गत पावह। जे प्रसाद वसै सुख मंदर तिसह त्याय सदा मने अंदर। जे प्रसाद ग्रे संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटम ब्रहंडावह तिसह त्या कतवर लुभ।

सब को मान मुक्ता को जस रचन बकान जी प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जब दर कह मान पावे नानक पत चेती कर जावे जे प्रसाद आरो कंचन देही लिवलाभ हो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पार ठाकुर प्रभता कह जे प्रसाद तुझको न पहुंचे मन सा सा सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद आ भूखन पैरी जय मन ति सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अश्व हस्त सुवारी मन तिस प्रभ कौ कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठत सद तिसह त्याई जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै जे प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान

प्रसाद कसंग सदा सुख पावे। साध संग बस्त गोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साध कसंग बसै थान उच्च, साधु कै संग महल पहुंचे। साध कसंग दृढ़ सब धर्म, साध कसंग केवल पार ब्रह्म, साध कसंग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साध के संग सब कुल उधार है, साध संग साजन बीच कुटम निस्तार है, साधु कै संग सो धन पावे, जिस धन ते सब कुवर।

सफल जिनम साधक संग नहीं कछ कालु दर्शन भेटत होत निहालु साधक संग कलुखत हरै साधक संग नरक पर हरै साधक संग इहां उहां सुहेला सत्संग बिछुरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साधक संग न बिरता जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साधक संग सुनो हर नाऊ साध संग हर के गुण गाओ साधक संग न मंति बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साधक संग लग्या ब्रह्म मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साधु भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जानै जीता सुनै तेता बखियानै

साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख किस बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागै तुल्पवान।

सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता ब्रह्म ज्ञानी कै हुई अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाक्षर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी कंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी साध जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता

नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी सलोकुर धारै जो अंतरनाम सर्व मैं पेखै भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार है नानक अपर सगल निस्तार है अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परसो मन में प्रीत निरंजन दर्शो पर त्रै रूप न पेख नेत्र साध की टहल संसंग हेत कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हरै मन की बासना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा परसो बै सुन सो जी सुपर सुपर सन विष्णु की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हो वह ने कर्म तिस वैष्णव का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं पाछे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मन तने अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ वह नाम जपावे नानको वैष्णव परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजय सगल पार ब्रह्म सासंग पापा मलको वै तिस भगवती की मत उत्तम हो वै भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पै विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म मैं शुद्ध है राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद प्राण सिमृत बूझै मूल सूखम मैं जानै अस्तूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत हुए सात संग पावै जन को कर कृपांतर उर तारै पस प्रेत मुगत पाथर को तारै सर्व रूप का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितै न पाइये धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सतराम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगै परवान अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सो जी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा तुम हितावै जीवन मुक्त सुख हावै तैसा हरख तैसा सुख सदानंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताय साई जुगत नानक को पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर रखै तैसा तिन्नाओ आपे करन करावण जोग प्रभावै सोई फुन होग फसर आप अंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक पुस्तत करहै अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कप का विचार है कई कोट नवतन नाम त्यावै नानक करते कंत न पावै कई कोट भय अभिमानी कई कोटा दंगयानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभेगातम निकोर कई कोट पर दर्भ को ही रह कई कोट पर दुख न करहै कई कोट माया श्रमाहे कई कोट परदेश परमाहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जानै करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पात्र बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्यर सूर नखियत्र कई कोट देव दानविंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत धार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राज स्थाम सातक कई कोट वेद प्राण सिमृत शास्त्र कई कोट की रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिर मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जग की नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगा सब ते नीर सबू ते दूर नानका पलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी
कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीवे मरे, कई कोट बोजोनी फिरे, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले तक पाहे, कई कोट गिये तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पाणा तै तैराके, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगति लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म है पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिल्यो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हो आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन।

अपने जन को सास सास मारे, नानको परमेश्वर के प्यारे। स्लो करण कारण प्रभे कहे दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहार ने जल थल मही अल सोय। अष्टपदी करण करावन करने जोग, जो तिस भाव है सोई होग। किन मैं था थापन हार, अंत नहीं किछ पार अवारा। हुक्मे तार तर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे। हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार। कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सम में रिहा समाई। प्रभाव है मानुक गत पावे, प्रभाव है ता पाथर तरावे। प्रभाव है बिन सास के राखे, प्रभाव है ता हर गुण पाखे। प्रभाव है ता पतत उधार है, आप करे अपन विचार है। दुहा सिरिया काप स्वामी, खेले बिकसे अंतर जामी। जो भाव है सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। कहो मानुक ते क्या हुए आवे, जो तिस भावे सोई करावे। इसके हाथ हुए ता सब किचले, जो तिस भावे सोई करे। अनजानत बिखिया मैं रचे, जे जानते अपने आप बचे। भरमे भूला दह दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिरे आवे। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन्ना मिले। किन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म करता पार ब्रह्म गरीब निवाज। जा का दृष्ट कछु न आवे, तित तिस तत्काल दह दिस प्रगटावे। जा को अपनी करे बख्शीश, ताका लिखा न गने जगदीश। जीव पिन सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। अपनी बनता बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई। इसका बल नाही सहाथ, करण करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस भाव है सोई पुनतियो। कब हूँ ऊंच नीच में बसे, कब हूँ सोग हर करंग हसै। कब हूँ निंद चिंद व्यवहार, कब हूँ बकाश पयाल। कब हूँ बेता ब्रह्म विचार, नानका मिला बनहार। कब हूँ नृत्य करे भोपात, कब हूँ सोए रह दिन रात। कब हूँ माँ क्रोध विकराल, कब हूँ सर्व की हो तरवाल। कब हूँ हुए बह बड़ राजा, कब हूँ पेखारी नीच का साजा। कब हूँ अपकीरत मैं आवे, कब हूँ भला भला कहावे। ज्यो प्रभ रखे तिब ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। कब हूँ हुए पंडित करे बख्यान, कब हूँ मोन धारी लावे ध्यान। कब हूँ तट तीर्थ स्नान, कब हूँ सिर साधिक मुख ज्ञान। कब हूँ कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनिक जोन पर मैं परमिया। नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभावे तिवै निचावे। जो तिस भावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए। कबहू सा संगत पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मंत्र नाम रतिक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल मह जल

बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने मैं जोबनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को कर्मंत कहावै जन्म मरै वो जोन प्रमावै धन भूम का जो करै गुमान सो मूर्खंदा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक हां मुक्ता गै सुख पावै धनवंता हुई कर गर्भावै तिन समान का संग न जावै बहु लश्कर मानुकु पर करे आस फल भीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दर गै परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरतारे अनिक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवे हर दर गह कौ कैसे गवे आप उसको जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेंजा का मन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जब ये जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जून मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मगन सगमाए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे सहज खट्टे लाको उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनिक भोग विखिया के करे नह तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोत वृथे सब का जय नाम रंग सर्व सुख हुए बड़भागी किसे प्राप्त हुए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप प्रभ सोए जो किछ किनो सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझै देखे करे विवेक आपहे कापहे अनेक मरे न बिनसे आवे न जाए नानक सद ही रहा सुमाए आप उपदेश समझे आप रचिया सब कै साथ आप किनु अपन विस्तार सब का जुसका करने हार उसते भिन कहो किछ होए थान थनंतरे कै सोए अपने चलताप करने हार कौतक करे रंग आपार मन मैं मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वकियानी सच सच सत सब कीना कूट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी घट घट सुनी श्रवण बखियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत सरण जो जन परै सो जने उदरनहार संत की निंदा नानका बार बार अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आरजा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक मह पाए संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखै न कोय संत कै दुखन थान प्रष्ट हुए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक भीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जो लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन तृप्त जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब कुछ लै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का थाव को नाही नान संत पावै तावे भीगत पाए संत का निंदक महा आत ताई संत का निंदक खिन टिक न पाई संत का निंदक मा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत के निंदा दुख मैं दुख नानक संत पावै ता उसका भी हुए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लाग गए संत के दुखी कल सब त्याग गए संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी
संत का दुखी जन्मै मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी को नाही ठाउ, नानक संत पावै तां लै मिलाई। संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज न पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान फरमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाही, आपन बीजा पे ही काहे, संत के दुखी कवर न रखन हार, नानक संत पावै तां लै उबार, संत का दुखी यों बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पाव किंदर नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै केला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथिया कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी कौ दर गह मिलै सुजाए, संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी न मरै न जीवाइय, संत के दुखी की पुजै न आसा, संत का दुखी उठ चलै निराशा, संत का दुख न त्रिष्टै कोई, जैसा पावै तैसा कोई होए, पया किरत न मिटै कोई, नानक जानै सच्चा सोए, सब घट तिसके उकरनै हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करहु दिन रात, तिसै त्याहु सास गिरा, सब कछु वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कुथिया,

कर लह जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग सा संग बिन सह सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानकू जल मथा बट भागी ते जन जग माही सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो कर विचार से तनवंत गणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुत की ओ सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै सा संग हर हर जस कहत सर्व रूप त्यो हर जन रहत आन दिन कीर्तन केवल बखियान गृष्ट में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर ब्रह्म मन चित आवै सो संत सुहेला नहीं डुलावै

मुख सोजन सदा अरोग ज्यो मंदर को थाम मैं थम्मन ज्यो गुरु का शब्द मने अष्टम मन ज्यो पाखा नाव चढ़तर प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन हुए बिगा ज्यो माओ ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बांछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिल लाइय पूर्व लिखे का लिखिया पाइय दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसे चितार जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरया जान कौन बसताई तेरे संग लट रहो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद सिद्धी घर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान लेहो मन मूल राम नाम हृदय महतोल लाद खेप संत संग चाल अवर त्याग विख्या जंजाल धन धन कै सब कोए मुखु जल हर दर गै सोए इहो वापार विरला वापार है नानक ताकै सद बलिहार है चरण साध के तुय तुय पियो अर्ब साधको अपना जियो साध की धूर करहो स्नान साध ऊपर जाइये कुर्बान।

ज्ञान कुहोसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेव दारू दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार कौ सत सब हुए नानक सत सत प्रभ सुए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करन करावन तिन मूल पछानिया जा कह हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरपौ हुए बसाना जिस ते उपजिया तिस माही समाना बस्त माही ने बस्त गड़ाई ताको भिन्न न कहना जाई बुझै बुझ नहार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राखै निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु धार है नानक सो सेवक साथ साथ सुमार है अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रख है ताकि गत मित कोई न लख है प्रभु के सेवक को न पहुँचे प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया निक्की कीरी मैं कल रख है भस्म करे लश्कर कोट लख है जिसका सास न काट ताप ताको रख दिख रहात मानस जतन करत बहुत तिसके करत बिरते जात मारन रख अवर न कोए सर्व जिया का रखा सोए काही सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रबलक विडानी बारंग बार बार प्रभ जपिए पी अमृत्यु मन तंत्र पिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके चवर नाही दृष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्तानी मंत्र नाम नाम समानी उठत बैठत सोवत नाम कहु नानक जन कै सदकाम बोलो जस जे बात दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करै भगता तुम कह चाये प्रभ अपने स्यो रह समाये जो हुआ हुवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानू तिसका गुण कै एक न जानू आठ पैर प्रभ सह जूरे कहु नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लेहे मन तने अपना तिन जन देहे जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोका दाता तिसकी शरण

युत अनुसार अष्टपदी। संत जना मिल करहु विचार, एक सिमर नाम आधार, और उपाव समीत विसारहु। चरण कमल रिद मह उतारु, करण कारण सो प्रभ सुमरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत। इहो तन संचो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस रखो मन बाहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन कौ चार कुंट उठतावै, सो तन हर सेवा ते पावै। जिस कौ नित बाचै मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस सुबा को करह भली करनी, सा सुबा भज हर की सरनी। अनिक उपावे रोग न जाए, रोग मिटै हर अब कदलाए। सर्व निदान में हर नाम निदान, जब नानक दरगह परवान। मन प्रबुद्ध हर कै नाए, दह दिस ताव ताव ठाए। ताकु विघ्न लागे कोए, जा कै हृदय बसै हर सोए। कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। भाव बिन सह पूर्ण होए आस, भगत पाया तुम प्रगास। तित कर जाए बसै अविनाशी, कौ नानक काटी जमपासी। तत् विचार कह जन साचा, जन्म मरै सो काचो काचा। आवा गौन मिटै प्रभ सेव, आव त्याग शरण गुरुदेव। और रतन जन्म का हुए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनिक उपावना छूटन हारे, सिमरत सास वेद विचारे। हर की भगत करो मन लाए, मन वंचित नानक फल पाए। संग न चाल तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना। सुतमेट कुतंबर बनता, इनते कहो तुम कवन सुनाता। राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार। असहस्ती रथ सवारी, झूठा डंप झूठ बासारी। जिन दिए तिस बुझे न बेगाना, ना विसार। नानक पुछताना गुर की मातू, ले याने भगत बिना बोडू बेस्याने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन बाही, जन्म जन्म के किल बिक जाहे। आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कैत रहत गत पावो। सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नानक गुण गाओ। गुण गाओ त्रि उतर समैल, बिन सजाए हौ मैं बिख फैल। हुए चिंत बसै सुख नाल,

फिर जाप अष्टपदी। जब अकार यो कछ न दृष्टिता, पाप तुम तब कहते होता। जब धारी आपन सुन समाद, तब बैर विरोध के संक मात। जब इसका वर्ण चेह न जापत, तब हरख सो कहु किसे व्यापत। जब अपन आपा पार ब्रह्म, तब मोह का किसोवत परम। अपन केला वर्ती जाप, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त को किस को गनी। जब एक हरगम पार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाई, तब शिव शक्त कहो कित ठाई। जब आप है आप अपनी ज्योत तरे, तब कवन निडार कवन कत डरे। अपन चलता करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अबनासी सुखापन आसन, तह जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किसोए। जब अविगत अगोचर प्रवेका, तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपन आप आपी चर्जा, नानक अपन रूप आपी उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता।

केवल जगदीश तै चल चिद्र लगत कौकीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तै किसै भूख कवन तृप्तावै करण करावन करने हार नान करते का नाही समार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माई बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कलाया पै प्रवीन तै वेद कतिब कहा कूचीन जब अपन आप आपुर धारै तो सगन अपसगन कहाँ विचारै जय अपन ऊच अपन अपनेरा तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानू आप जय छल छेद भेद समाया ऊहा किसै व्यापत माया पुसको आपया देश त्यो गुण का नाही प्रवेश जय कहे एक एक भगवंता तै कौन अचिंत किस लागै चिंता जय अपन आप आप त्यारा तै कौन कथे कौन सुन नै हारा बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपै पहुँचा जय आप रचियो परपंचकार त्यो गुण मैं किन्नु विस्तार पाप पुन तै पही कहावत को नरको सुर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हम मैं मोह भरम पै भार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बख्यान आपन खेल आप कर दिखै खेल संकोचै तू नानक एकै जय अभिगत भगतै आप जय पसरै पासार संत प्रताप दुह पाकै आपे तनी उनकी शोभा उन्हों बनही आपै कौत करै आनंद जोज आपै रस भोगन निरजोग जिस भावै तिस आपन आय लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै

ओंकार बंधन तोर भय निर्वैर अन दिन पूजै गुर के पैर ए लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभया पह मेले साध संग मिल करहु आनंद गुण गावो परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का यह सुहाओ

अष्टपदी पूरे गुर का सुनुपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर के उतरे चिंद आस अनित्या गुप्त रंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहु सा संग अगण सागर तरहु हर तन के पर लेहु भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सासंग भज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित्तवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी कह है धार उत्तम श्लोक साध के बचन अमली कलाल रतन सुनत कमावत वो तो दारु आप त्रैलु कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कह मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत वाजय सुन सुन अंध करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महांत कह माथे नानक उतरे तिन कह साथे शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभाप मिलाए मिट गए बैर भये सबरेन अमृत नाम सा संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निबही खेप हमारी प्रभ की उसद करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सुहोत निदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सब त्यूच पाए स्थान बौर न हो गया वन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप जोग प्रवत्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कह मत सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने इहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बुकाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध सा संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुट्टै

हर प्रवचीत जन्म मरणता का दुख निवार है, दुर्लभ दे तत्काल उदार है, निर्मल शोभा मृता की बानी, एक ना मन माहि सुमानी, दुख रोग बिन से पै परम,

कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखियां भुख न उतरी जे मना पुरियां पार। सहस सियाणपां लख होहे तां एक न चलै नाल किव सचियारा होइऐ किव कूड़ै तुटै पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईऐ। एक ना हुक्मी बखसीस एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमें कहे ना कोए। गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वडियाइयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर। कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाही। हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे प्रवाह। साचा साहिब साच नाए पाखिया पाऊ अपार आख है मंगा है देह देह। दात करे दातार फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार। मोहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर। नानक एवै जानिए सब आपे सचियार। थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए। जिन सेविया तिन पाया मान नानक गावीऐ गुणी निधान। गावीऐ सुनीऐ मन रखीऐ पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए। गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहिया समाई। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। तीरथ नावा जे तिस पावा विण पाणे के नाए करी। जे ती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए। चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले। जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोए करे। सुना है सद पीर सुरनाथ सुना है धरत धवल आकाश सुना है दीप लो पाताल सुना है पोहे ना सकै काल। नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास सुना है ईसर ब्रह्मा इंद सुना है मुख साला हनुमंद सुना है जोग जुगत तन भेद सुना है सासत सिमरत वेद। नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास सुना है सात संतोख ज्ञान सुना है आठ साठ का इशनान सुना है पढ़ पढ़ पावै मान सुना है लागै सहज ध्यान। नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास
सुना है सारा गुणा के गाह, सुना है सेख पीर पात सा, सुना है अंधे पावे राह, सुना है हाथ होवे असगाह, नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नास, मन्ने की गात कही न जाए, जे को कहे पिछे पछुताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध, मन्ने मोहे चोटा न खाए, मन्ने जम कह साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने पावे मुख द्वार, मन्ने परवारे साधार, मन्ने तरे तारे गुर सिख, मन्ने नानक पवे ना भिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान, पंचा सोहै दर राजान, पंचा का गुर एक क्यान, जे को कहै करै विचार, करते कै करने नाहीं सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवै सचियार, तबलै ऊपर केता पार, धरती होर पर होर होर, तिस ते पार तलै कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया गुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई फलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ेयार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पाखो खाहे, असंख निंदक सिर कर है पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख काहे हे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई फलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हाथ पैर तन देह, पानी धोता है उतर सोखे, मूत पलिती कपड़ होए, दे साबून लइए ओ धोए, भरिया मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग, पुनी पापी आखण नाही, कर करना लिख लै जाहो,
आपे बीज आपे ही खाहौ, नानक हुकमी आवह जाहौ। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावे तिलका मान, सुनया मन्या मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए। स्वस्त आथ बाणी ब्रह्माओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवन सो वेला वक्त कवन, कवन थेत कवन वार, कवन से रुति माह कवन जित हुआ आकार। वेल न पाइया पंडती जे होवे लेख पुराण, वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख कुराण। थेत वार न जोगी जाने रुत माह न कोई, जा करता सरठी कौ साजे आपे जाने सोई। केव कर आखा केव साला ही, क्यों वरने केव जाना। नानक आखण सब को आख एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवै नानक जे को आपो जाने। अगै गया ना सो है, पाताला पाताल लख आगासा आगास। उड़क उड़क पाल थके वेद कहन एक बात। सहस अठारह कहन कतेबा असलो एक तात। लिखा होए ता लिखिए लिखै होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। सलाही सलाहे इति सुरत न पाईया। नदियां अतै वाह पवै सुमुंद, न जानिए सुमुंद साह सुल्तान। गिरहा सेती माल तन, कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मन हुना विसरह है। अंत ना सिफती कहन ना अंत, अंत ना करण देन ना अंत। अंत ना वेखण सुन ना अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत। अंत ना जापै कीता आकार, अंत ना जापै पारावार। अंत कारण केते बिल लाहे, ताकि अंत ना पाए जाहे। एहो अंत ना जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे कौ जाने सोए। जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता करम लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंगा है जोद अपार, केतिया गणत नहीं विचार। केते खाप तुट है वेकार, केते लै लै मुकर पाहे। केते मूर्ख खाही खाहे, केतिया दुख भूख सद मार। ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणै होए। होर आख ना सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए। ओह जाने जेतिया मोहे खाए, आपे जाने आपे दे। आख है से पे के जिसनों बख से सिफत सलाह। नानक पात साही पात साहो। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारी ये अमुल पंडार। अमुल आव है अमुल लै जाहे, अमुल पाए अमुला समाहे। अमुल धर्म अमुल दीबाण, अमुल तुल अमुल परवान। अमुल बखसीस अमुल निशान, अमुल करम अमुल फुरमान। अमुलो अमुल आखिया न जाए, आख आख रहे लिवलाए। आख है वेद पाठ पुराण, आख है पढ़े कर है वख्याण। आख है बर में आख है इंद, आख है गोपी तै गोविंद। आख है ईसर आख है सिद, आख है केते कीते बुद्ध। आख है दानव आख है देव, आख है सुर नर मुन जन सेव। केते आख है आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे। केते कीते होर करे हे, ता आख न सक है केई के। जे वड पावै ते वड होए, नानक जाने साचा सोए। जे को आखै बोल विगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। सो दर केहा सो घर केहा, जित बह सर्ब संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे। केते राग परि स्यों कहियन, केते गावण हारे।
गावै तुहनो पाउण पाणी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावह इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावै मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावै जोध महाबल सूरा गावै खाणी चारे गावै खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे थारे सेई तुदनो गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले पूर के ते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो ते सुभावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सुपात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की करहै बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चलावह लिखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबाण जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमाण ओह वेखै ऊना नदर ना आवै बहुता एहो विडाण आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेस आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेस एक दूजी बौ लख होहे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़ियां चढ़िया हुए इकीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै नीसान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी वैसंतर केते कान महेस केते बरमे घाड़त घड़ी है रूप रंग के वेस
ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂਪ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ।

ना कथने जाहि ना उहे मरहै न ठगे जाहि जिनकै राम वसै मन माहि तिथै भगत वसै केलो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर पंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तप ताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़ी है शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपने कि नेड़ै कि दूर जिने नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले के

नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहिमे नमस्तं करिमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपूखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो योगयोगी नमो भोगभोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्व प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अते हैं अपे हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अपर्ण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमित हैं रफीक हैं अतंद हैं अबंध हैं निर्बूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अलाह हैं अजा हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं नृसरीक हैं निर्लंब हैं असंभ हैं अगम हैं अजम हैं अपूत हैं अशूत हैं अलोक हैं अशोक हैं अकर्म हैं अपर्म हैं अजीत हैं अपीत हैं अबा हैं अगाह हैं अमान हैं निधान हैं अनेक हैं फिर एक हैं कुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपहुणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पहने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पहने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिना नेक लंकी स्वरूपे नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे नमो योग योगवेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रजवेश्वरं परम दृदे नमो शास्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो योग योगवेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशु धर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो साहसाहं नमो पुहूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इशनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बोधदा बिरद कर्ता अधो उर्द अर्धं अगं ओगहर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेति अपेति अनामं अकामं समस्तु पराजी समस्तास्ततहमं तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात छंद अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साहसाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत परीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रेत सिद्धं निवासी चरपट छंद त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रूआल छंद त्व प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद अशेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा विशा होय फैल्यो अनुराग
नाम काम विहीन पेखत तामहु नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे। एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। देव पेव न जानहि जेह बेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानहि केह जेव। पात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मानहि पुर तीन। लोक चाउ दाह के बिखै जग जापहि जेह जाप। आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप। परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयंभव गड़न भंजन हार। कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश। धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेस। अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम। गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम। आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत। गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत। अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार। सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार। सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख। सर्व शास्त्र न जानही जेह रूप रंग अर रेख। परम वेद पुराण जा कह नेत पाकत नित। कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित। मधुभार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार। आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास। अजान बाहु शाहान शाहो राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल। अनपूत अंग आपा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम। आत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म। सर्वा प्रणाढ़ अंडंड बाटे चाचरी शांत त्व प्रसाद। गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद। चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने। चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले। चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद। न सत्र न मित्र न परमं न पित्र न कर्मं न काय अजन्मं अजाय। न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अदिशय अदृश्य अकृशय भगवती छंद। त्व प्रसाद कथते कि आशिज दिशा कि अभेज्य पेशा कि अगंज कर्म कि अभंज परम कि अभेज लोक कि अदित सुक कि अवतूत वरण कि विभूत करण कि राजंग प्रभा है कि धर्मंग तुजा है कि आशोक वरण कि सर्वा अभरण कि जगतंग कृति है कि शत्रंग क्षत्रि है कि ब्रह्मंग स्वरूपे कि अनपौ अनुपय के आद अदेव हैं के आप अपेव हैं के चित्रंग बहिने के एक अधीन के रोजी रजा कह रहीमे रिहा कह के पाक व्यैब हैं के गैबुल गैब हैं के आप बुल गुना हैं के शाहान शाह के कारण कुनंद हैं के रोजी देहांत हैं के राजक रहीम हैं के कर्मंग करीम हैं के सर्वंग कली हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वत्र मान्य हैं के सर्वत्र दाने हैं के सर्वत्र गौन हैं के सर्वत्र पाउन हैं के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र साजाय के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र कालय के सर्वत्र पालय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है
के सर्वं कली मैं के परमं फही मैं के आकल अला मैं के साहिब कला मैं के हुसन अल वजू हैं तमाम उल रजू हैं हमें सो सला मैं सलीखत मुदा मैं गनीमल सिकस्त है गरीबल परसुत है बिलंदुल मकान है जमीन अल जमान है तमीजुल तमाम है रजूअल निधान है हरीफल अजीम है रजायक यकीन है अनेक उतरंग हैं अभेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त बेपूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुदा हैं सदैव स्वरूप हैं अभेदी अनूप हैं समस्त उपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्त सलाम हैं सदैव अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओवंग आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभृग त्रिबादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व पहाके सुसर्पा अनुरागे त्रिपोगत स्वरूप हैं अशिज हैं अशुत हैं कि नरकं प्रणाश हैं पृथ्वीवल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभोगत स्वरूप हैं परजुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभोगत प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं परजुगत अनूप हैं चाचरी छंद अपंग हैं अनंग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपर्म हैं अकर्म हैं अनाद हैं युगाद हैं अजय हैं अभय हैं अपूत हैं अतूत हैं अनाश हैं उदास हैं अतंत हैं अबंध हैं अपागत हैं विरक्त हैं अनाश हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलेख हैं अधिक हैं अलेख हैं अपेख हैं अटा हैं अगा हैं असंभ हैं अगम्भ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद त्वा प्रसाद सर्वंगता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंग्ञाता सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंगप्राणं सर्वंगप्राणं सर्वंगकर्मं सर्वंगधर्मं सर्वंगयुक्ता सर्वंगमुक्ता रसावल शांतत्वा प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय नृसाकं सरीप हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती शांत त्वा प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सुल सलाम हैं समासुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं कि हुसन चिराग हैं कि कामल करीम हैं कि राजक रहीम हैं कि रोजी देहंद हैं कि राजक रहंद हैं क्रीमल कमाल हैं कि हुसन जमाल हैं गनीमल खिराज हैं ग्रीबुल निवाज हैं हरीफुल सिकन हैं हिरासुल फिकन हैं कलंकं प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजायक रहीम हैं समस्त जुबा हैं के साहिब किराह हैं कि नरकं प्रणास हैं बहस्तुल निवास हैं कि सर्बुल गवन हैं हमेशुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परं परम ईश हैं समस्तुल अदीस हैं अदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमीनल जमा हैं अमीकुल इमा हैं क्रीमुल कमाल हैं कि जुरत जमाल हैं के अचलं प्रकाश हैं के अमितो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के अमितो विभूत हैं के अमितो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलं अनंग हैं के अमितो अपंग हैं मधुभार शांतत्वा प्रसाद मुनमन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हरनर प्रपंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हरनर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनास मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिसविस अपंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास अजान बाह एक सदाह ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कार कार प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आजिज न बात अनझांझ गात अनरंज बात अन ठट पंडार अन ठट अपार
अडीठ धर्म अतटीठ कर्म अणब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत तुआ प्रसाद। करुणालय है अरिकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विश्वम्ब्र है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खाल खंडस है परते पार है करुणाकर है अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणीकृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है खलकायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है भव पंजन है अरिगंजन है रे प्रतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकार है हर्ता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद। नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग अततंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री छंद अजय अलय अपह अभय अबू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अढ़ा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद। नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग बेभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल पुनिंदा समस्त निवासी अजायब बेभूते गजायब गनिमे हरियं करियं क्रीमुल रहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बिभूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवें तुआ प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरे घर जोग जैती के सुर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखिए तो प्राणपति के श्री भगवान की पाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जार संग अनूप उतंग सुरंग सुवारी कोट तुरंग कुरंग से कूदत पाउन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप पली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते पय तो कहाँ पय भूप तो अंत को न गेहि पाए पधारे जीत फरै सब देश दिशान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवैख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के तहम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब सुबिचार हजार कदेख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सो दिस बहा दुरंत तो बा सो साज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चर सार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया
ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੋ ਤੋੜਨ ਹਾਰ ਸੋ ਬਾਤਨ ਹੀ ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਿਵਈਆ ਦਾਨ ਵਦੇ ਫਨਿੰਦਨ ਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੇਂਗੇ ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੇਂਗੇ ਪੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾਟ ਜੈਤ ਧੁਨ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੇਂਗੇ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ ਸਤਰ ਸਵੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੇਂਗੇ ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਰਾਤਪ ਜੌਨ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰੇਂਗੇ ਕੋਟ ਇਸ਼ ਨਾਨਕ ਜਾਦਿਕ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸੁਅੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰੇਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸਰ ਬਿਸਨ ਸਚੀ ਪਤ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰੇਂਗੇ ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਾਗ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹੇ ਤਰੇਂਗੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਖ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਨਾਥ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਥ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ ਕਉ ਬੁਤਾਨ ਕਉ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਾਸ਼ ਕਉ ਮਿਰਤਾਨ ਕਉ ਪੂਜਨ ਤਹਾਇਓ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰ ਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਓ ਕਉ ਬੁਤਾਨ ਕਉ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਾਸ਼ ਕਉ ਮਿਰਤਾਨ ਕਉ ਪੂਜਨ ਤਹਾਇਓ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰ ਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵੋ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵੋ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕਉ ਆਜ ਸੰਗਰੀਐ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮੈ ਛਾਟ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧਿਆਉ ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ ਹੈ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਝੈ ਉਭਰੀਐ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ ਹੂ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਧੁਜ ਜੋ ਕਰੇ ਹਵਰ ਅੱਛਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹੇ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪ ਧਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ ਦੇਵ ਦਾਇਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਗਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਿਵ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦੀਓ ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲਮੋ ਬਾਧ ਕੀਓ ਘਾਟ ਘਾਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸ ਤੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ ਘਾਟ ਘਾਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨੈ ਜਬ ਉਦਕਰਕ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇ ਅਪਾਰਾ ਜਬ ਅਕਰਕ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ ਤਾ ਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ ਤਾ ਕੋ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਹਾਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨ ਜਾਨਤ ਮਹਾਦੇਵ ਕਉ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸੇਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭੇਵ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ਰੰਗ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤ ਜਕੀਨੇ ਓਤ ਭੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਾਚ ਦੀਨੇ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸੰਕਰ ਕੈਠਾ ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸੁਯੰਭਵ
अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण कहता, जे अस तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार त्याय है, ताकि काल निकट न है आए हैं, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मोह हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह शोय सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल पास ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा, खाड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ द लिहो उबारी, सर्ब ठाउर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लिहो बचाई, कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, केल बेख सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को शय करता, श्री असतो जिजब भये दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांशत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई, अड़िल सुने गुंग जो जाहि सुरसना पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नरके रहै, हो जो जाकी एक बार चौपाई को काहै चौपाई, संबत सत्राय सहस पाणि जय, अर्ध सहस फुन तीन कहि जय, भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर सुतद्रव ग्रंथ सुधारा, सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक न जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कार, मैं न कहेउ सब तुहे बखान्यो, दोहरा सगल द्वार कहो शाटक, गहो तुहारु द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोबिंदास तुहार, सगल द्वार कौ शाटक, गहो तुहारु द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, राम कली महला तीजा, आनंद एको ओंकार सतगुरु प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तप पाया, सहज सेती मन वजिया वाधाइया, राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईया, शब्दोता गावो हरि केरा, मन जने वसाया, कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सुवारना, सब नागला समरथ स्वामी, सो क्यों मनहो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिन कह मन वसया, वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारू, सच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुरबान कीता गुरु विटहो, जिस दिया ए वडियाइया, कहे नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारू, वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित घर तारिया, पंच दूत तुद वासो कीते, काल कंटुक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कहो, से नाम हर कह लागे, कहे नानक तय सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे, साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवै बाजहो, क्या करे वेचारिया, तुद बाज समरथ कोए नाही, कृपा कर बनवारिया, केस नाओ होर खाओ नाही, शब्द लाग सुवारिया, कहे नानक लिवै बाजहो, क्या करे वेचारिया, आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरु ते, कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरहों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चै सवारिया, कहे नानक एहो आनंद है, आनंद गुर ते जानिया,
ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ, ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸੋ ਜਨ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰੈ ਦਹਿ ਦਿਸ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸੁਆਰਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ। ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ, ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਤੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ। ਤਾਨ ਮਾਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕਉ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਾਗਾ ਵਹੁ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਕਥੇ ਹੋ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਾ ਹੀ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਆਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣਹੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਆਖ ਵਖਾਣਾ ਏ। ਆਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਆਗਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਇ, ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸੁਣ ਆਇਆ। ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਹਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਖੰਨ ਅਹੋ ਤਿੱਖੀ ਵੱਲ ਹੋ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਚੱਲ ਭਗਤਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ, ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾ ਹੈ ਤਿਵ ਚੱਲਹਿ ਸੁਆਮੀ। ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾ ਹੈ ਤਿਵੈ ਚੱਲੈ, ਜਿਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਏ, ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੀ, ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖ ਪਾਵਹੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹੇ। ਇਹੋ ਸੁਹੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹੋ ਤਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਧੁਰਹੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਫਿਰਹਿ ਕਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ, ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ, ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ। ਕਹਿਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ, ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ, ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਵਿਣ ਸਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ, ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਸਹਿਸੈ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਧੋਵਹੁ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗਹੁ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹਉ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਵ ਜਾਏ। ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਰੋਹ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਰੋਹ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ, ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ, ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਜੀਉਹ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰੋਹ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਰੋਹ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉਹ ਨਿਰਮਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਣੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾ ਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੇ ਖੱਟਿਆ, ਭਲੇ ਸੇ ਵਣ ਜਾਰੇ।
कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहै गुरु नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै त सनमुख सिख कोई। जियो रहै गुरु नाले गुर के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मै संभाले। आप छड सदा रहै परणै गुर बिन अवर न जाने कोए। कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुकत न पावै पावै मुकत न होर थै कोई। पुछो बिबेकियां जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुकत न पाए। फिर मुकत पाए लाग चरणी सतगुर शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुकत न पाए। आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गाव हो सच्ची बाणी। बाणी ता गाव हो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी। पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पाणी। कहे नानक सदा गाव हो एह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी त कच्ची। सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित करै रसना कहया कछु न जाने। चित जिनका हिर लया माया बोलन पै रवाणी। कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाऊ। शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाऊ। शब्द से ती मन मिलिया सचे लाया पाऊ। आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाऊ। सेव साकत आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखाए गुरमुख किसे बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुकत शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एक सस्यों लिवलाए। कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तताय सार ना जाने। तताय सार ना जानी गुरु बाजों तताय सार ना जानी। तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहण विहाणी। गुर कृपा ते से जन जाकी जिना हर मन वसया। बोलै है अमृत बाणी कहे नानक सो तत पाए। जिसनु अन दिन हर लिव लागै जागत रहण विहाणी। माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मन हो विसारी है। मन हो क्यों विसारी है ए वड़दाता। जे अग्न में आहार पहुँचावे उसनो केहो पोहे न सकी। जिस नाओ अपनी लिव लावे अपने लिव आपे लाए। गुरमुख सदा संभाली है कहे नानक ए वड़दाता सो क्यों मन हो विसारी है। जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया। माया अग्न सब इको जे ही करता है खेल रचाया। जात इस भाणा ता जमया परवार भला पाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिने विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए। मुल ना पाया जाए किसै विटहौ रहे लोक वेल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनु सिर सौंपी है विचहु आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन बण जारा हर रास मेरी मन बण जारा। सतगुरु ते रास जानी हर हर नित जपेओ जियो लाहा खटे हो दिहाड़ी। एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन होआ वणजारा। ए रसना तू अन रास राच रही तेरी प्यास न जाए। प्यास ना जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै ना पाए। हर रस पाए पल्लै पीऐ हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागे आए। एहो हर रस करमी पाई है सतगुर मिलै जिस आए।
कह नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया। गुरप्रसादी बुझिया ता चलत होआ चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया ज्योत राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी गृहो मंदर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापय। गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापय। अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया। जिन हार तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक एहो शरीर परवान होआ जिन सतगुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जोत धरी हर बिन अवर न देखो कोई। हर बिन अवर न देखो कोई नदरे हर निहालिया। एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एको है हर बिन अवर न कोई। कहे नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिले देव दृष्ट होई। ए सरवण हो मेरे हो साचा सुनने नो पठाए साचा सुनने नो पठाए। शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुने मन तन हरिया होआ। रसना रस समाणी सच अलख वेडाणी ताकि गत कही न जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचा सुनने नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी इकना दसवां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाउ नावनेद तिसदा अंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारा जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहेला सच कर गावो गावो ता सोहेला कर सच जिथे सदा सच ते आवहे। सचो ते आवै जा तुद पावै गुरमुख जिना बुझावहे। एहो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावहे। कहे नानक सच सोहेला सच्चे कर गावहे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे।

मत्स्य टिक्का तेड़ धोती तो कखाई हाथ छुरी जगत कसाई नील बस्त्र पैर हुए प्रमाण मिले धान ले पूजे पुराना भाक्या का कुठा बकरा खाना चौकी ऊपर किसे न जाना।

मानव सब सुख नौ निद ताकै, सहज सहज जस बुलै देव रहाओ, तब इह मत जो सब मह पिखै। कुटल गांठ

वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर, बिमल बास जानिए जग सोई रहाउ। ब्राह्मण वैश सूद अर खत्री, डोम चंडार मलेच मन सोय। होए पुनीत भगवंत भजन से, आप तार तारे कुल दोए। धन सो गाओ धन सो ठाओ, धन पुनीत कुटुंब सब लोए। जिन पिया सार रस, तजे आन रस, होए रस

तम सब मत तिसकी आस लग जन्म गुवाई, इनकै किछ हाथ नहीं कहा कर करह एह बपड़े, इनका वाहया कछ न वसाई, मेरे मन आस करह हर

जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना, मेरे मन अन दिन ध्याए नाम।

नित बसे हृदय हरि मोहि चरना। गौंड महल्ला चौथा। जितने साहा पात साहा उमराव सिख

जो हर महल पावे गुरबचनी तिस जीवड अवर नाही किसै दातान रहाउ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसै।

जप हर नित पढ़िए, हर बिन को मार जिवाल न सके, ता मेरे मन कायत कढ़िए रहाओ। हर परपंच की

आओ गुरु प्यारे साथ सिंह जी, अज दे पावन पवित्र दिहाड़ा होला महला अते वैसाखी दा पूर्व ए दीवान इना खुशियां दे विच सजे हन। संगता बड़ी दूरों दूरों चल के गुरु दरबार दे विच पहुंच रही हैं। पहला शब्द आप जी ने सरवण किया, आओ जी तू आओ हमारे हर जस सरवण सुनावना, तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संगावना। फिर गुरपुरा नमस्कारी प्रभु सभी काज सवार, ऐसी भावना ऐसी श्रद्धा लेके पहुंच रही हैं संगता। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सोख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमार। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। साडा आउण दा समा सफल हो जाए जे सतगुरां दे चरणां नाल जुड़ के ए श्रद्धा दी भावना दे नाल कि मालका तेरी सरण दे विच आए हां। कृपा करी मेहर प्रिया हथ रखी, आउण वाले समय दे विच संगता दे सारे कारज आप जी ने सवारने हां। सो आओ गुरपुरा नमस्कारी प्रभु सभी

ज्यादा खतरा एक किया खतरा आया पिछो हलका है थोड़ा कवर कर सकता है बस एदे नाल नहीं वो तो हो जाएंगे थोड़ा कवर कर सकता है चल सकती है ज्यादा ओवर फिट भी नहीं लग रहा है थोड़ा जहा ना थोड़ा ओवर साइज भी नहीं डिगन का तो सोच रहे डिगन का जगदीश कमजोर है

0: पहला ही जरूरी रहूंगा पहला ही बात चला तो वायर कनेक्ट कर दें तो रेडी कर दें पहले ही और कम तो कर लो अपना जरूरी है
1: करके थले
0: कनेक्ट कर माइक कितने थोड़े
2: ਇਹਨਾਂ ਚ ਲਾ ਲੋ

0: बात कर लेंगे। अरे जगदीश देखियो शायद दिन हो गई, अपने को एक्स्ट्रा कहीं जगदीश पही है
1: एक 27 चाहिए
0: बस 27 माइक दिन लोड पहनी है तो उन्होंने माइक दी है ना
1: इतने की ले गया
0: एक की है 26
1: अगर 26
0: 24 नंबर चलाई हुई है अपना
1: 27 नंबर में लानी है तार केड़ी लानी है
0: तार वहां बीच में ला देने हैं ओके 27 नंबर ला के रेडी कर दो चार कर दो जल्दी से अपना
1: माई

सम्मान योग्य सत्संगी जनों, मैं आप जी नू जिना शब्दों का कीर्तन सुना रहा हूं कि गुरु ग्रंथ साहब जी की वडियाई विच जदों जदों भी जां प्रकाश होया, संपूर्णता हुई, जां गुरता गद्दी ते गुरु साहब शब्द गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान होए, जो हुक्मनामे आए, मैं उन्हां दा कीर्तन कर रहा हूं। थोड़ा जा मैं क्योंकि सानू गाउण वाले नूं दिक्कत हुंदी स्केल दा हिसाब किताब हुंदा गाउण दा, उस हिसाब नाल मैं उपर तो शुरू किया है। जिहड़ा नदेड़ दी धरती ते हजूर साहिब हुक्मनामा सानू बख्शिश होया सी जदों गुरता प्राप्त हुई शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, उस हुक्मनामे दा मैं कीर्तन कर रहा हां। दूसरा शब्द जो सी सतगुरु आयो सरन तुहाड़ी, ए जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बीड़ संपूर्ण हुई, गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी बाणी दर्ज कीती गई, 31वां राग दर्ज किया गया, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने दमदमा साहिब की धरती से सतगुरां नूं संपूर्ण रूप दिता, उस वेले का हुक्म है सतगुरु आयो सरन तुहाड़ी।

0: कैसियों से 19 लड़ा 26 लड़ा कर रहा कैसियों से 19 लड़ी और 26 जिला गया मेरी गल सुन उठे तबले जो बैठे ना वो जेडे इतने चमके चमके वाले बैठने दिस इज बेटर पिछों लाने ना
1: वाहेगुरु
2: ਛੱਬੀ
0: ਕੈਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ

0: 25 26 25
1: तो अगला
0: अगला 25
1: 26 है कैसियो,
0: 26 कैसियो,
1: 27 है वोकल।
2: दो वोकल उसके ना
1: हूँ अगे दो होर वोकल ने 15 नंबर से एक नंबर 15
2: देख ला केड़े केड़े आ दे हेलो हाँ एक नंबर है 15 और ब्लू वन के
1: 27
0: 15
1: वोकल
2: हाँ दे
1: 15 दो एक
2: 15 सेमी आप 15 और
1: 27
2: कैसी है 26